0: You are tuned to the voices of the subcontinent.
1: रेडियो हार्मनी के श्रोताओं को अरविंद गुप्ता का प्रणाम. आपका हार्दिक स्वागत है. रेडियो हार्मनी हर बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर आपके लिए आता है. रेडियो हार्मनी आपको समसामायिक मुद्दों, महत्वपूर्ण घटनाओं, समाचारों, विचारों और समुदाय से जुड़े मुद्दों की कवरेज लाता है. जानकारी और मनोरंजन से भरपूर एक घंटे के लिए आप हमारे साथ बने रहें. एंड फ्रेंड्स, बिफोर आई बिगिन, एज आई मेंशन्ड लास्ट वीक, आई वुड लाइक टू रिपीट माय कॉल टू द इंडियन कम्युनिटी टू कम फॉरवर्ड एंड जॉइन द ब्रॉडकास्ट टीम एट रेडियो हार्मनी. सपोर्ट अस टू कंटिन्यू ब्रिंगिंग यू योर फेवरेट प्रोग्राम्स विदाउट ब्रेक. I especially encourage the youth to come forward. You can contact us on harmonyfm2xx@gmail.com. दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को है. हम अभिलिप्सा पांडा की मधुर आवाज में भगवान जगन्नाथ के आह्वान के साथ इसकी शुरुआत करेंगे.

0: नीलाद्री नाथम अभिलिप्सा पांडा की आवाज में ये जगन्नाथ रथ यात्रा का एक गीत था, भगवान जगन्नाथ का आह्वान। इसके बोल लिखे थे डॉक्टर रूरू कुमार महापात्रा ने, संगीत दिया था शिवा प्रसाद रथ ने। दोस्तों, आज 15 जुलाई को चंद्र दर्शन है, आषाढ़ की शुक्ल प्रतिपदा। कल जगन्नाथ रथ यात्रा और 16 को ही कर्क संक्रांति पड़ती है। 19 को स्कंद षष्ठी है, 21 की पार्वती जयंती, 25 को गौरी व्रत शुरू होता है और 25 को ही देवशयानी एकादशी है, 29 को गुरु पूर्णिमा और 29 को ही व्यास पूजा, और 30 तारीख को श्रावण शुरू होता है नॉर्थ में। आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है, 18 को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, 20 को वर्ल्ड चेस डे एंड इंटरनेशनल मून डे, 25 को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, 25 को ही वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे है, इंटरनेशनल डे फॉर जुडिशियल वेलबींग है, 28 को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 30 का इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप और 30 को ही वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस। मित्रों, आप कोई विशेष कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप हमें harmonyfm2xx@gmail.com पर ज़रूर लिखिएगा। एंड प्लीज़ कम एंड जॉइन हारमनी द टीम सो दैट वी कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड गुड कवरेज ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स ऑन रेडियो हारमनी। प्रिपरेशंस फॉर द जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 हैव गैदर्ड पेस इन पुरी ओडिशा, with authorities conducting extensive mock drills to ensure a safe and incident-free festival. The Odisha Fire and Emergency Services Department has deployed 1,750 firefighters, advanced firefighting robots, aerial ladder platforms, rescue teams and 450 trained lifeguards for beach safety. K-9 squads and coordinated chariot pulling rehearsals have also been carried out as lakhs of devotees are expected to participate in the world famous Rath Yatra on July 16th.
1: Nath Rath Yatra have gathered pace in Odisha's Puri, with authorities conducting extensive mock drills to ensure a safe and incident-free festival.
2: Ahead of the Jagannath Rath Yatra, the local administration is leaving no stone unturned, conducting a series of mock drills across Puri to ensure a safe and incident-free festival. On Monday, the Odisha Fire and Emergency Services Department held a mock drill on Grand Road to review its preparedness ahead of the world-famous Chariot Festival. Around 1,750 firefighters have been deployed across the pilgrim town with modern firefighting robots, high-reach and aerial ladder platforms, specialized rescue units, and other emergency response equipment. With lakhs of devotees expected to visit Puri during the festival, around 450 trained lifeguards equipped with advanced rescue gear will be stationed along the coast as part of special beach safety arrangements.
3: The Odisha Fire and Emergency Services Department has made extensive arrangements in Puri for the Rath Yatra. Lakhs of devotees are arriving. There is also the sea here, and the Grand Road will witness huge crowds. Keeping in mind the possibility of a fire, any accident, people getting trapped, or the risk of drowning in the sea, we have deployed all the advanced equipment available with us.
2: K-9 squads have also been deployed to assist in search and rescue operations. Authorities also held a mock drill to rehearse the coordinated pulling of the three chariots, ensuring a smooth and safe Rath Yatra.
4: A mock drill was conducted at the reserve office to rehearse the process of pulling the chariots during the Rath Yatra. It basically involves coordination among the state police force, the rapid action force, the central police force, Jagannath temple force and representatives of the local administration to pull the chariot.
2: With security and emergency preparations entering the final phase, authorities say all arrangements are in place for the smooth and safe conduct of the Jagannath Rath Yatra on July 16th.
0: That was a DD India, Doordarshan India presentation, which outlined all the preparations that are ongoing in Odisha. भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र जिसे पुरुषोत्तमपुरी शंख क्षेत्र श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं यहां के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं इसी प्रतीक के रूप श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर भगवान हैं और श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप हैं ऐसी मान्यता श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच सखाओं की है पूर्ण परात्पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं यह भगवान का जन्म स्थान है इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था इस स्थान का धार्मिक महत्व जगन्नाथ का मंदिर है शास्त्रों और पुराणों में भी रथ यात्रा की महत्ता को स्वीकार किया गया है स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लोट लोट कर जाते हैं वे सीधे भगवान श्री विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर जनता के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं सब मनीषा मोर प्रजा सब मनुष्य मेरी प्रजा है ये उनके उद्गार हैं भगवान जगन्नाथ तो पुरुषोत्तम हैं उनमें श्री राम श्री कृष्ण अद्वैत का ब्रह्म समाहित है उनके अनेक नाम हैं वे पतित पावन हैं
5: द जगन्नाथ रथ यात्रा इज नॉट मियरली अ प्रोसेशन इट इज अ मूविंग कॉस्मोस ऑफ फेथ लेगेसी एंड मिस्टिसिज्म Held annually in Puri, Odisha, it marks the ceremonial journey of Lord Jagannath, a form of Krishna, along with siblings Balabhadra and Subhadra, from the Jagannath Temple to the Gundija Temple. The Jagannath Rath Yatra is not just a religious procession. It is a spiritual spectacle where gods step out of their temples and mingle with the world. Rooted in ancient tradition and overflowing with symbolic depth, this annual journey of Lord Jagannath, a form of Lord Krishna, his brother Balabhadra and sister Subhadra, is filled with mysteries, meanings and miracles. The flag atop the Jagannath temple always flutters against the wind's direction. This mysterious phenomena defies normal aerodynamic behavior and has been a subject of spiritual awe and scientific curiosity for centuries. Despite its height and structure, the main dome, Shikhar, of the temple casts no shadow at any time of the day, whether due to architectural genius or divine design. This optical anomaly is still unexplained. Every 12 to 19 years, the wooden idols of Lord Jagannath, Balbhadra, Subhadra and Sudarshana are secretly replaced in a sacred ritual called Navkalevar. The process involves transferring a mystical Brahmapadarth, soul-like element, in a highly guarded ceremony that even the priests perform blindfolded.
6: Namaste, I'm Shalini Mody. On the 11th of June is the Snan day. So every year on Jaisth Purnima is their birthday, the day Vishwakarmaji created them, and it's celebrated by giving them a bath of 108 kalashas of water. The idols are brought out on a special platform, the Snan platform, where they are bathed, after which they get fever and are restricted to special quarters with special service by only their Veds and the priests who take care of them, give them kara, medicine and a restricted diet. After which, after the 15th day or in 15 days, they recover and then go on their lavish Rath Yatra to their maternal aunt's house called Gundicha. Here they stay for 7 days and enjoy her hospitality. The Rath Yatra is beautiful. The three Rath of Bhagwan go through the city and it is celebrated with great pomp and show. This time it will fall on 27th of June. Namaste.
0: Jagannath Rath Yatra Secrets of the Holy Temple. ये एक रिपब्लिक टीवी का प्रेजेंटेशन था. रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र, और अंत में गरुण ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं. ताल ध्वज रथ 65 फुट लंबा, 65 फुट चौड़ा और 45 फुट ऊंचा है. इसमें 7 फुट व्यास के 17 पहिए लगे हैं. बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज और सुभद्रा जी का रथ को देवलन जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे हैं. संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं. अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन वहीं रहते हैं. गुंडीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है. श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है. श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला. कहते हैं कि महाप्रभु बल्लभाचार्य की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनके एकादशी व्रत के दिन पुरी पहुंचने पर मंदिर में ही किसी ने प्रसाद दे दिया. महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेकर स्तवन करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी. अगले दिन द्वादशी को स्तवन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया और उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ. नारियल, लई, गजामूंग और मालपुआ का प्रसाद विशेष रूप से इस दिन मिलता है.
7: 2XX is Canberra's premier alternative radio station, here since 1976. We're proudly independent. You can tune in and access fresh voices, alternative viewpoints, and hear a huge range of diverse homegrown content. Hear independent news and views on issues that affect us all, and listen to a full weekday afternoon of Australian and local music, plus over 20 2XX music shows from many special genres. Our shows are broadcast in over 13 languages, discussing local news and events, airing voices and alternative viewpoints that matter to our local community. Each week, over 100 volunteers make over 80 hours of homegrown, quality content just for you. So why not subscribe to 2XX for as little as 7 cents a day and do your part in keeping us on the airwaves. Get access to special discounts, giveaways and news from 2XX throughout the year. Go on, visit the 2XX website today.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो हार्मनी जो हर बुधवार को शाम 7 से 8 बजे तक प्रसारित होता है पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर. मित्रों, हम आज स्पेशल बात कर रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की.

महाप्रभु जगन्नाथ, इसका संगीत और बोल ये दिया था कौशल किशोर ने और गाने वाले थे पवनदीप राजन। कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न जो सपरिवार नीलांचन सागर यानी उड़ीसा के पास रहते थे को समुद्र में एक विशाल काय काष्ठ दिखाई दिया। राजा के उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय करते ही वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई न आए। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवारजनों को यह ज्ञात न था कि वह वृद्ध बढ़ई कौन है। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकेगा, अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने महाराजा को अपनी सहज शंका से अवगत कराया। महाराजा के द्वार खुलवाने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा अर्ध निर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की काष्ठ मूर्तियां वहीं पर मिली।

पुरुषोत्तम स्तोत्रम, ये बड़ा ट्रेडिशनल स्तोत्र है और इसे गाया था केतन पटवर्धन ने। तो कहानी ये थी कि महाराजा और महारानी दुखी हो उठे क्योंकि वहाँ वो वृद्ध बढ़ई नहीं मिला और काठ की अर्ध लिपि वो मिले पुतले। तो लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं, मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दें। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तम पुरी की रथयात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित हैं। रथयात्रा माता सुभद्रा के द्वारका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष होती है।

जगन्नाथ पंचकम, ये संस्कृत में थी लिरिक्स, इसके थे ट्रेडिशनल और इसे कंपोज किया था तुषार परगांवकर ने और गाने वाली थी राजलक्ष्मी संजय। तो मित्रों, ये आज का हमारा खास पेशकश थी जगन्नाथ रथ यात्रा की। उम्मीद है पसंद आई होगी और हमें लिख भेजिए आप इस तरह के और कार्यक्रम सुनना चाहें तो harmonyfm2xx@gmail.com। Please try and join the team at Radio Harmony. We would like to continue broadcasting without break and we would appreciate your getting involved with these shows. So please do contact us. मित्रों, 20 जुलाई को नसीरुद्दीन शाह का जन्मदिन पड़ता है। नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक, खासकर समानांतर सिनेमा में उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां में भी अभिनय किया है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1987 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1982 में उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी अभिनेत्री रत्ना पाठक से शादी की, जो अभिनेत्री दीना पाठक की बेटी हैं, जिनसे उनके 2 बेटे हैं। उनकी भाभी अभिनेत्री सुप्रिया पाठक हैं, जिनकी शादी अभिनेता पंकज कपूर से हुई।

0: रखा था।
1: तुझसे नाराज नहीं, ये था फिल्म मासूम का एक गीत। ये फिल्म आई थी 1983 में और इसे गाया था अनूप घोषाल ने, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने, बोल लिखे थे गुलजार ने। नसीरुद्दीन शाह ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1970 के दशक के मध्य में समानांतर सिनेमा से की और निशांत, आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, त्रिकाल, भवनी भवई, जुनून, मंडी, मोहन जोशी हाजिर हो, अर्ध सत्य और कथा जैसी फिल्मों में अभिनय किया। शाह ने 1980 की फिल्म हम पांच के साथ मुख्य धारा के बॉलीवुड सिनेमा में सक्रिय हुआ। 1982 में उन्होंने राखी के साथ इस्माइल श्रॉफ द्वारा निर्देशित फिल्म दिल आखिर दिल है में अभिनय किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मासूम 1983 में रिलीज हुई थी और इसे सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल में शूट किया गया था। उसी वर्ष वह कल्ट कॉमेडी फिल्म जाने भी दो यारों में दिखाई दिए। मुख्य धारा की फिल्मों में उनकी अगली बड़ी सफलता 1986 की मल्टी स्टार फिल्म कर्मा थी, जहां उन्होंने अनुभवी दिलीप कुमार के साथ अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने इजाजत 1987, जलवा 1988 और हीरो हीरा लाल 1989 जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। 1988 में उन्होंने मर्चेंट आइवरी की अंग्रेजी फिल्म द परफेक्ट मर्डर में अपनी पत्नी रत्ना पाठक के साथ इंस्पेक्टर घोटे का किरदार निभाया। उन्होंने आदित्य पंचोली के साथ मालामाल 1988 की फिल्म और गेम जो 1993 की फिल्म थी जैसी फिल्मों में काम किया।

इश्क किया इब्न बतूता, ये 2010 की फिल्म थी और इसे गा रहे थे सुखविंदर सिंह, मिल्का सिंह, और बोल लिखे थे गुलजार ने, म्यूजिक दिया था विशाल भारद्वाज ने। उन्होंने कई मल्टी स्टारर फिल्मों में भी काम किया है, जैसे गुलामी 1985, त्रिदेव 1989 और विश्वात्मा 1992। 1994 में उन्होंने मोहरा में विलन का रोल किया, जो एक एक्टर के तौर पर उनकी 100वीं फिल्म थी। उसी साल उन्होंने टीवी चंद्रन के ड्रामा पोंथन मादा के जरिए मलयालम सिनेमा में कदम रखा। फिल्म में एक सामंती सर्फ और एक औपनिवेशिक जमींदार के तर्कहीन संबंधों को दर्शाया गया है। उनका दृढ़ विश्वास था कि कला और व्यावसायिक फिल्मों के बीच का अंतर काफी हद तक कम हो गया है, खासकर पूर्व के निर्देशकों द्वारा व्यावसायिक फिल्में बनाने के बाद। 2000 में शाह ने कमल हासन के हे राम में महात्मा गांधी की भूमिका निभाई, जो हमलावर के दृष्टिकोण से गांधी की हत्या पर केंद्रित थी।